जेड़ा कपड़े करे करोड़ा बिच बस ओनू लीडर मन देने। पेन बैंक च दो रुपया दा जेनू तागे दे नल बन देने। जिथे रब कर संगता जुतियां जिथे रब कर संगता जुतियां नू रख सिर।

ऐसे चौन से गोडा कौन धरे, ऐसे चौन से गोडा कौन धरे, चोरा नाल रलिया कुतियां ने, यारो मैं उस देश का वासी हां।

मैं सदा तेरे नादार उड़ा रेहानी निकल गया दार उड़ा मंजिल दे वाले चले सी नी मंजिल दा हुन राए थोड़ा। मैं सदा तेरे रादा डोड़ा रेहानी निकल गया दारोड़ा मंजिल दे वाले चले सी नी मंजिल दा हुन राए थोड़ा। मेरे कुप हनेरे नू

दिन रात मेहनता कर दे हां, मजदूर पक्की सरकारा होन जे, फिर खुदकुशियां क्यों कर दे हां। कुलवंत हक्कां नूं समझे ना कोई, कुलवंत हक्कां नूं समझे ना कोई, ताइयों हक

करके मैनू याद, रोया करेंगी तू, हाय करके मैनू याद। बदलां दे विच चन्नी जदों मुस्कुराएगा, बदलां दे विच चन्नी जदों मुस्कुराएगा, चेहरा मेरा फेर तैनू

किसे पागल इशक दे विच होके, विच होके हाय विच होके, किसे पागल इशक दे विच होके, पत्थर खा के जिस्म छिला लेते, किसे आशक बन के नैर पुट्टी, नैर पुट्टी हाय नैर पुट्टी, किसे आशक बन के नैर पुट्टी, पट इश्क दे पर ना गई सीते। इस कड़ी दो कड़ी दे इश्क नेता है इश्क नेता, इस कड़ी दो कड़ी दे इश्क नेता, कारोबार नू दिते लो आप लिते। किसे चढ़ के मैल तो छाल मारी, छाल मारी है छाल मारी,

हां जनाब, गधे वाकया ही अंब नहीं खांदे, जाने कि तुसी नहीं खांदे तो फिर तुसी भी गधे दे बराबर ही हो। उर्दू शायर अकबर इलाहाबादी दी जरा अंबां दे बारे आशकी देखो लिखदा है आखर दे विच, नामा ना कोई यार को पैगाम भेजिए, नामा ना कोई यार को पैगाम भेजिए, इस फसल में कुछ भेजिए तो बस आम भेजिए, ऐसे जरूर हो कि उनको रख के खा सकूं, पुख्ता यानी कि पक्के, पुख्ता अगर हो 20 तो 10 आम कच्चे भेजिए। क्या बात है जी, क्या बात है जी, वाह कमाल दोस्तों। ये सी जी साडा विरसा विरासत जिन्हों असीं अनगोलियां कीता आले दुआले दे विच, अंबियां दियां अंबां दियां खासियत ते अंबां दियां उत्ते साडा लोक बोलियां लोक गीत विरसा विरासत, वड्डे वड्डे शायर जिन्हां ने अंबां दे उत्ते इन्ना कुछ लिखिया, अंबियां दे बूटियां ते लग गया बूरनी ते रुतबे प्यारां वाली माही मेरा दूर नहीं। लो दोस्तों, उम्मीद करते हैं चंगी लगी हुई भी गलबात तुहानू, ते इस दे नाल ही फिर आपां अग्गे वल नूं वधदे हां ते गलबात तुहाडे सुनेहे लैके अज समाप्ति करते हैं, ते कहानी तुहानू किसे होर दिन जरूर सुनाउण दी कोशिश रहेगी, ते आखर दे विच जे कॉल करनी चाहुंदे हो तां तुहाडी उड़ीक दे विच मैं तुहाडा दोस्त भुपिंदर भारज ते दुआबा रेडियो दा मंच उड़ीक दे विच हाजर हाँ जी, ते आखरी समय वल नूं आपां वध रहे हां ते जांदे जांदे तुहाडे सुनेहे मैं सांझे करके ते आग्या लवांगा, जेकर कॉल करनी चाहुंदे हो तां निघा स्वागत रहेगा। +358 44 976 19 बार स्टूडियो दा नंबर है, ते जांदे जांदे कोशिश करांगा कि एक बूटा अंबी दा वी तुहाडे नाल जरूर सांझा करन दी कोशिश रहेगी, ते तद तक मैं तुहाडे सुनेहे जिहड़े ने उहनां दी बात जरूर पाउण दी मैं कोशिश करदा अपने ते सब तो पहला सुनेहा दोस्तों आया आसा सिंह मस्ताना उन्हां दा गीत है, उन्हां दा सुनेहा नहीं आया, राजन सैनी साहब दा सुनेहा लाइक नंबर एक ते सति श्री अकाल जी सारे प्यारे नूं समूहिक रूप दे विच जी, सुरजीत भारत जी इंडिया तो सति श्री अकाल साडे मदर कहिंदे ने, ते इसे तरह ही अपने दुआबा रेडियो दी टीम दे वल्लों वी सति श्री अकाल सब दोस्तां नूं, सैनी साहब कहिंदे वेलकम शम्मी वीर जी, ते इसे तरह दविंदर भारत जी यूए तो सत श्री अकाल कहिंदे ने, सतराम सिंह जानिया चाल जी सत श्री अकाल कहिंदे सारिआं नूं, ते सत श्री अकाल जी सारे प्यारिआं नूं कहिंदे ने, ओजला साहब यूएस तो, शैली बाई जी कहिंदे भारत जी ते दुआबा रेडियो दे सारे सत्कार स्रोतिआं नूं प्यार भरी सत श्री अकाल है, शैली बाई जी कहिंदे सैनी साहब जी ग्रेट जी, मान सिंह सैनी साहब जुड़े हुए ने हलसिंकी तो सत श्री अकाल सारिआं नूं कहिंदे ने जी, ओजला साहब कहिंदे मालिया हांजी विजय मालिया की गल हुई सी जी सैनी साहब दे नाल, ओह गल करदे सी मैनूं नाम नहीं चेते सी ना उहनां नूं, ते गलबात हुई है ते तुसी सहयोग दिता नाम चेते कराया बहुत बहुत शुक्रिया सब दोस्तों का, ओजला साहब का दविंदर भारत जी का यूए तो, शैली बाई जी का भी शुक्रिया धन्यवाद सारे दोस्तों का, शैली जी कहते नीरव मोदी भी है जी एक हाँ जी हीरिया वाला व्यापारी, राजन राजीव कुमार जी बाई जी लिखते हैं सत श्री अकाल जी सारे दोस्तों, मुकद्दर बाई जी कहते सत श्री अकाल प्यारे हो, इसे तरह अपने राजीव कुमार जी ने सुनेहा भेजा सी बंगाल के बाबत, बंगाल दे विच इस वार बीजेपी ने ममता बैनर्जी दियां वोटां बहुत कटवाईयां ते अज कन्नां दे विच जिहड़ा कई जगह दे उत्ते दंगे भी होए है ते बीजेपी लगदा है कि इस वार मल मारजू बंगाल दे विच ओह वी धोखे दे नाल, क्योंकि उत्थे वोटिंग अज बहुत वड्डे पद्धर दे उत्ते जिवें मैं पहलां जिक्र कीता होई है जी, ते जो हालात ने उत्थे दे नज़र आ रहे ने ते हो सकता है कि बदल जाए सारा कुछ। दूसरे पासे ट्रंप के विवादित बोलों ते अमेरिकी दूतावास का डैमेज कंट्रोल जिहड़ा कीता जा रहा जिहड़ी मैं पहला गलबात करके हटिया कि चीन ते भारत जिहड़े ने नर्क वर्गे ने अमेरिका दे ट्रंप साहब ने गलबात कर दित्ती है एक जिहड़ा सी इंटरव्यू दे दौरान, ते अपने आप दे विच ओह अहमियत रखदी गल है ते लोकां दी भी इज्जत है माण है सारा कुछ है, ते इसे तरह सुनेहा दे वल नूं चलिए, मुकद्दर बाई जी कहिंदे मापे कहिंदे जज लगना मुंडा हवा हवा लात गया कई बारी,
ਆਪਣੇ ਅਰਮਨ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ, ਕਿਤਾਬ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਹੈ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕਰਕੇ ਹਟਿਆ ਮੈਂ। ਤੇ ਰਾਜਨ ਸਾਇੰਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੈਲੀ ਵੀਰ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਬਰਾੜ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅੰਕਲ ਜੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਜੀ ਭਾਰਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਮੂਹ ਸਤਿਕਾਰ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅੰਕਲ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਲਈ, ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲਈ, ਹੱਲਾ ਸ਼ੇਰੀ ਦੇ ਲਈ, ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਐਪ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਵੈਬਸਾਈਟ, ਯੂਟਿਊਬ, ਫੇਸਬੁੱਕ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਅੱਜ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟੈਕਨੀਕਲ ਇਸ਼ੂ ਸੀ ਦੋਸਤੋ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਪੋਸਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਸਾਰੇ, ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਾਵਲ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜੰਗਲਨਾਮਾ ਦੀ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ਤੇ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ, ਹੋਰ ਸਾਰਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਭਾਰਤ ਜਿਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਨਿੱਘੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਸਹੀ ਐਗਜੈਕਟਲੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 9:30 ਈਵਨਿੰਗ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਤੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ 12:00, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੇ ਵੈਂਕੂਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰ ਦੇ 9:00, ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 5:00, ਫਿਨਲੈਂਡ 'ਚ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 7:00, ਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 6:00 ਜੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਤੇ ਨਿੱਘੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਕਬੂਲ ਕਰਿਓ ਦੋਸਤੋ, ਵੱਧ ਘੱਟ ਬੋਲ ਗਏ, ਲਿਖਣ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਸਤਾਖੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਾਫ਼ੀ ਦੇਣਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਤੇ ਨਿੱਘੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਹੋਵੇਗੀ ਮੁਲਾਕਾਤ। ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੀਤ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਛੱਡ ਕੇ ਚੱਲਿਆ, ਅੰਬੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਅੰਬੀਆਂ ਦੀ ਬਾਤ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਬੂਟਾ ਅੰਬੀ ਦਾ, ਆਸਾ ਸਿੰਘ ਮਸਤਾਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਮ। ਐਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੀਤ ਸੁਣ ਸਕੋਗੇ। ਯੂਟਿਊਬ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੀਤ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਚੱਲੇਗਾ ਦੋਸਤੋ, ਮਾਫ਼ੀ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਨੇ ਯੂਟਿਊਬ ਦੀਆਂ। ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਜੀ, ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਤੱਕ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ।

0: थैंक यू जी, थैंक यू, बहुत खूब जी।
1: क्या बता क्या बता, इना औरंग साहब भाई सोचने वाली गल है,
0: जी
1: इना इना जबरदस्त गीत है और बड़ा हिट भी है। ओ एक ता भाई कह रहा भी जिथे भी रहेगी भाई मैं मतलब स्मेल तो पहचान लू, दूजा दूजा ये भी कह रहा भी जब तो तेरे ना प्यार हो गया जीना ही दुश्वार हो गया, मतलब बड़ा ही पलूटेड जा काम हो गया।
2: दुश्वारी
1: वाली है जी, बिलकुल दुश्वारी
0: जी
2: बिलकुल। मैं ना थोड़िया जी लाइना ने आ थोड़ी आ इसे टॉपिक ते धरती आले ते उदा, चलो मैं वैसे थोड़ा जा शुरुआती लाइट माहौल करने वास्ते मैं थोनू सुनाता, मेनू याद आ गया धरती टॉपिक ते।
1: जी जी जी
2: है ना, इसे वातावरण के टॉपिक ते ने, दो तीन लाइना मैं थोनू सुनाना फिर उस तो बाद
0: जी
2: मैं ज्यादा नहीं गल कर, बाकी ओजला भाई जी भी जुड़े हुए ने।
0: जी
1: जी जी जी
0: आवाज कट हो रही है जी मुकद्दर जी,
2: थोड़ा पूर्ति वास्ते फिर असी ओ जिहड़े खर खर हां
0: जी
2: जी जी हुण हुण ठीक है।
0: हां जी हां जी जी कंटिन्यू।
2: हां क्योंकि असी लोड़ां जिहड़ियां वधाणियां लोड़ां दे हिसाब नाल फिर असी ओ खर्चे जे पूरे करन वास्ते ओहदे वास्ते पुठे सिधे काम करने आ
0: जी।
2: मेनू नहीं लगदा वी बंदे नूं जिंदगी एक वधिया जीउण वास्ते इन्नियां लोड़ां दी लोड़ हैगी आ जिन्नियां असी, ओह इह शो ऑफ हैगा
0: जी
2: वी जे दूजे ने ऐ तां वी मेनू वी ऐ चाहीदा, ओहदे चक्कर च असी सारा जिहड़ा सिस्टम हैगा ना, इह मेनू लगदा हो सकदा मैं गलत होवां,
0: इह
2: सारा अस्त व्यस्त कीता होया हिंदी दे शब्द ने अस्त व्यस्त
0: जी।
1: हां जी हां जी
2: मैं सुनाउणा दो कुल है ना
0: जरूर जी।
2: चिट्टी मूली लाल टमाटर हरे रंग दे खीरे, इस धरती चो तेल निकलदा सोना चांदी हीरे, चिट्टी मूली लाल टमाटर हरे रंग दे खीरे, इस धरती चो तेल निकलदा सोना चांदी हीरे, तीन तीन फसलां कढ के बंदिया पूरे कर दे खर्चे, तीन तीन फसलां

दास सच्चा वही तो है भगवान का, तू सहारा अगर ना किसी का बना तो ये जीवन तेरा बस।

कली बैठी हम मैं लेके आसार एक बारी मिल सजना जिंद अपनी मैं दीती है गवा एक बारी मिल सजना झूठ अंग साक सब झूठा संसारे झूठा संसारे रब नू विसार के झूठे नल कीता प्यार वे झूठे नल कीता प्यार वे रही खोटियां ते सच्चियां सुना एक बारी मिल सजना जिंद अपनी मैं दीती है गवा एक बारी मिल सजना काल दा निशाना मेरे सिरे उत्ते वजना सिरे उत्ते वजना कड़े है जड़ा उन्हें एक दिन पजना एक दिन पजना एक

लिखे है मन ने बड़े यतन से तेरी महिमा में कुछ नगमे, सुने तुमने भी इस मन से जो तुमने ही लिखाए हैं, लिखे है मन ने पहाड़ों से निकल कर जल नदी कहती मेरे संग चल,

है, लिखे जो मन ने बड़े यतन से, तेरी महिमा में कुछ नगमे सुने तुमने भी इस मन से, जो तुमने ही लिखाए हैं, लिखे जो मन ने। ये हरियाली भरी वादी, ये फूलों से

लुक लुक के सौदे करना है, लुक लुक के सौदे करना है, बिन मेहनत बोझे पर दाए, लुक लुक के सौदे।

जुबां से जो दिल ही दुखाता रहे, जुबां से जो दिल ही दुखाता रहे, उसका जीवन तो है

का सफर ये सुहाना बने। छोड़ दे तू अगर सारे शिकवे गिले, जिंदगी का सफर ये सुहाना बने।

सदा उसकी मौज में, खुश रहे जो सदा उसकी मौज में, दास सच्चा वही तो है भगवान का, खुश रहे जो सदा उसकी ही मौज में, दास सच्चा वही तो है भगवान का, तू सहारा अगर ना किसी का बना, तो ये जीवन तेरा बस।

चन्न सितारे खुशियां केड़े नहीं आहे रास कदे। शीशे अगे खड़के जद भी चेता आया बीतदा, बीत पल में याद कराता नहादा विश्वास कदे।

एहसास करो ओ मेरी माँ है कंबदी, जद हवा चलेगी ठंडी तन नो चंबदी, एहसास करो।

0: चल अड़िया हाथ फड़िया पा तुर चलिए चन दी सैर नू। चल अड़िया हाथ फड़िया पा तुर चलिए चन दी सैर नू।
1: मम्मी विशेष जी दी रचना चन दी सैर दे नाल ही असी इस काम्य फल दा इथे ही समाप्ति करने आ ते अगली काम्य फल तक हरवंत सिंह नूं दिओ आग्या। हरवंत सिंह वल्लों एक बार फिर सारे श्रोतियां शायरां नूं